को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया रागत न परवार।

0: तो हाथी उठाए सरगुर वाले काश दे तो हाथी उठाए
1: सरगुर वाले काश दे तो हाथी उठाए।

सर्व सुख दाता हरे, जं के बस है काम धेना, सो ऐसा हर धैय मेरे जियड़े, ता सर्व सुख पाम है मेरे मना, जप मन सत

0: इतनी हाजरी प्रवान करनी, क्योंकि समा मैं भी दो तीन मिनट उत्ते लै गया। असल विच वक्ता भावे किड्डा भी वड्डा वक्ता होवे, जे ओ वक्ता नहीं ते फिर वक्ता भी नहीं। जे किसी स्टेज सैकटरी ने पहुंचे खिच खिच के बिठाया भी बह जा भाई तेरा टाइम खत्म हो गया ते फायदा की। सत संगत माफ करना, कई थावां ते स्टेज सैकटरी इस तरह दे मैक अगे हथ रख के मैक पासे लै जांदे भी भाई तेरा टाइम समाप्त। बड़ी फिर इंसल्ट फील हुंदी है, इस वास्ते माफी चाहना। दो तीन मिनट मैं उपर लै गया अपने समय विच समाप्ति करन तों। फुला चुका दिखेवा जी, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की
1: सत। श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यह सन बहुत ही सत्कारयोग हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो दरबार साहब तो भाई साहब भाई सुखजीत सिंह जी कुहाड़का उन्हों का रागी जथा समूह संगत वालों जथे का बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु सच्चे पातशाह जी रहमत करन, इसे तरह चढ़दी कला दे नाल कौम दी पंथ दी सेवा करते रहन। सो खालसा जी, जो अज तीसरे दिन दे विच राग दरबार सज रहा है, जिस विच सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो बहुत ही सत्कारयोग जथे अपने कोल पहुंचे हुए ने। भाई कमलजीत सिंह जी उन्हां ने हाजरी भरी है, भाई गुरजीत सिंह जी उन्हां ने हाजरी भरी है। इन्हां गुरमुख प्यारियां दा तहे दिल तो धन्नवाद है जो बेनती नूं प्रवान करदे होए इस राग दरबार दे विच हाजरियां भरदे लई पहुंचे ने। सो आओ खालसा जी, जो अगला जथा है बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरदेव सिंह जी फुल, भाई अमरीक सिंह जी फुल, जो साडा अपना घर दा जथा है। बहुत ही पिछले लंबे समय तो खालसा जी इस वैनकूवर की धरती ते आले दुआले इलाके दे विच कीर्तन दी सेवावां निभा रहे ने। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी रहमत करन, चढ़दी कला बख्शिश करन। सो आओ तकरीबन आने वाले 25 मिनट वास्ते दो जो शब्दां दी हाजरी भरनी है, जो दो राग गायन करने ने, गौड़ी ग्वारी ਅਤੇ ਵਡਹੰਸ ਦੱਖਣੀ। ਸੋ ਦੋ ਰਾਗ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੁੱਲ, ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਕਡੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

रामचंद्री राग के अंदर धन गुरु नानक देव जी महाराज की बड़ी कीमती पंक्ति है, पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन जिधे विध जाने। धन गुरु नानक देव जी महाराज इतों तीन जागता है कि आप जिथे एक महान आत्म ज्ञानी ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, गुरुदेव ने, वसत के अवतारी पुरुष ने, उत्थे वो शरीर शास्त्री भी ने। तिन ने पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। विधाते जी इस विधि नू कौन जानदा है कि जो पुरख का शरीर है उसके अंदर नारी दे कण भी है और जो नारी का शरीर है उसके अंदर पुरुष के कण भी है। कोई भी जो शरीर है मां बाप तो आया है तो उसके अंदर मां की अंश भी है, पिता की अंश भी है, पुरुष के कणु भी हैं और नारी के कणु भी हैं। कहने ने पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके कि उसके अंदर पुरुष के कण से पूरे ने, नारी अधूरी है, अर्ध हम और नारी स्त्री मैं इस वास्ते स्त्री हो सकी है कि उसके अंदर नारी के कण से पूरे ने, पुरुष अधूरा है, अर्ध हम। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस गल नू ते तस्लीम किया कि बाहर दी ए नारी पुरुष के अंदर दे हर अंग नू संपूर्ण करती है, पर पुरुष का अहंकार प्रबल सी, उसने यह गल अंदरों ते तस्लीम की, बाहरों आखण दे संकोच किया कि पुरुष भी अर्ध अंग है, क्योंकि पुरुष के अंदर नारी अधूरी है, नारी दे अंदर पुरुष अधूरा है, पुरुष करके नारी अर्ध अंग है और नारी करके पुरुष अर्ध अंग, अर्ध अंग अधूरा अंग। तो ये दो अंग मिलके संपूर्ण हो, ये अर्ध अंग बाल की कशिश पैदा करते हैं, पुरुष दे अंदर नारी की कशिश, नारी दे अंदर पुरुष की कशिश। गुरु नानक देव जी महाराज का कहना कि वो जो अर्ध अंग है वो संपूर्ण होना चाहिए। इस अर्ध अंग की जड़ी संपूर्णता है, ये पशुओं की तरह ना हो, मनुख आकर मनुख है, ये को सोचनी है, ये को विचार ने, तो इस समाजिक रसम नो धर्म के दायरे में चलाने की आज्ञा है, ताकि रिश्तों में पुख्तगी हो, रिश्तों में पक्याई हो, रिश्ते अटूट होवन और जिस रिश्ते के विचोले आप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बन जाओ, मोर गुरबाणी भी लगे और इस तरीके प्राचीन ऋषि मुनि धर्म की मोर ला के इस अर्ध अंग की संपूर्णता करते सन, तो इसका नाम उन्होंने रखा कि विवाह। गुरमति यह नाम रखा गया है आनंद कार, खुशी का एक कम, क्योंकि अर्ध अंग संपूर्ण हो रहा है। ऐसी जेरी मर्यादा बनाई है परिपूर्ण परमात्मा ने हाथ बनाई है, ईश्वर भी एक होंदा होया अनेक है, उसने मनुख नू भी अनेक हिस्सों में वंडिया। जैसे कलगीधर पिता कहते ने अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। हे प्रभु तू एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। उसने खास करके पुरुष नू भी ते नारी नू भी अनेकता दे वंड दिता है। जो पुरुष किसी का बच्चा है, लड़का है, वो किसी का भरा भी है और किसी का फिर पति बनता है, किसी का पिता है, किसी का दोस्त है, किसी का पड़ोसी है। एक पुरुष कितने रूप रखता है, एक भरा भी है, एक पति भी है, एक पुत्र भी है, एक पड़ोसी भी है, एक दोस्त भी है। इस तरह स्त्री भी एक होंदे होया अनेक है। जे किसी की बच्ची है, किसी की धी है, तो किसी की भैन भी है, किसी की बहन तो किसी की सहेली भी है,
कि तेरी पड़ोसन भी है और फिर के तेरी ते पत्नी। सारे रिश्तों में पकियाई होवे, पवित्रता होवे, इस वास्ते विचोला चाहिदा सी। तो विचोला गुरु गुरु मोर लांदा है कि मनुख पुरुष भरा बने ते चंगा बने, लोकी मान करन के भरा होवे ते ऐसा होवे, ते पति बने ते आदर्शवादी और एक वाकई नमूना बने, और ये पुत्र बने ते ऐसा कि मां बाप फकर कर, ये दोस्त बने ते ऐसा कि दोस्त उससे मान कर, और ये पति बने ते ऐसा कि पत्नी का मान सम्मान ते इज्जत आबरू बने, उसकी खुशी बने। हू बहु इसे तरीके नाल इतनी ही जिम्मेवारियां ने बच्ची दी, ते बच्ची ऐसी बने कि मां बाप के हिरदे हमेशा याद करते रहन, कि साडे घर का बिछड़िया होया फुल सी पहले महक वंडी पेके घर दे, हुण महक वंड रही है सौरे घर, और मां बाप की खुशी बनी रहे, महक फैल रही है, खुशबू फैल रही है। ते पत्नी बने आदर्शवादी, ते भैन बने महान, दया मान करन, भैना मान कर। सारे रिश्तों में पख्याई ते पुख्तगी ते लाजमी है। ते पत्नी होवे ते ऐसी कि सारिया ही खुशियां का सोमा बन जाए पति, और पति मान करे। तो इस लाजमी है कि रिश्ते महानता आवे, किसी महान नाल संबंध जोड़े, और इन्हों दो आत्माओं के संगम, इन्हों दो शरीर के संगम में कोई मदद चाहिए है। जैसे परिपूर्ण परमात्मा की दुनिया की असं देखते हैं, दोहां जोड़ने तीसरा चाहिए, दो कागज जोड़ने ने गोंद चाहिए, दो कपड़िया जोड़ना है, कोई धागा चाहिए, कोई इटा जोड़ना है, तो बकायदा गारा सीमेंट इत्यादि चाहिए है, दो लकड़ा नु जोड़ना है, श्रेय किल कुछ ना कुछ है चाहिए है, दो दिलों नु जोड़ना है, इतने दो दिल जोड़ने, दो विचारों नु जोड़ना, दो ख्यालों नु जोड़ना, तो कोई तो चाहिए है, बस ये गुरु तीजा है जो दोहां नु इक करता है, दोहां ते मोर लांदा है। ते हुण मैं दो मिनट आपके होर गवां ते समाप्ति करा। रिश्ते दुनिया के दो तरह के हैं, खून के रिश्ते, ख्यालों के रिश्ते, विचारों के रिश्ते, मन का रिश्ता। जिहड़े खून के रिश्ते ने, इन्हां दीआं प्रणालियां तीन ने, नानके दादके सहुरे। बे खून का रिश्ता दादकियां नानकियां ते फिर सहुरियां, पर नानके दादके ते सौरियां दे रिश्तियां नू जिथों जन्म मिलता है पति पत्नी तो, ये रिश्ता खून का रिश्ता नहीं है। बच्ची किसे घर की, बच्चा किसे घर का खून तो एक नहीं है, किस तरह किया जा सकता खून है, ये खून एक नहीं है। तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने भी नहीं मने, सतगुरु की बाणी कहती है ये दिलों की सांझ है, विचारों की सांझ, एक जो दोए मूर्ति धन फिर कही है सोरे। महाराज कहते ने असि पति पत्नी उसनों कहने, विचार एक हो गए ने मूर्तियां दो, ख्याल एक हो गए ने मूर्तियां दो ने, पर इतनी गल स्पष्ट है जिथे विचार की सांझ हो जाए प्यार का जन्म उथे ही, वरना नहीं होगा। जिथे विचार की सांझ हो जाए प्यार उथे पैदा होता है, और जिथे प्यार है उसते एतबार भी आता है, एतबार भी मनुख का उसे नहीं जाता, और जिथे एतबार है कहने ने सदाचार का वास्ता भी उसे ही है, और जिथे सदाचार है करतार दियां सारियां बख्शिशां भी उसे, करतार दियां सारियां न्यामता भी उसे ने। आप सारे सियाने बैठे हो, बच्ची बच्चे भी ए भी दोने सियाने ने, ये रिश्ता विचारों की सांझ का है, ख्यालों की सांझ का है। एक जो दोए मूर्ति,
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਾਦਕੇ ਨਾ ਨਾਨਕੇ ਨਾ ਸੌਕੇ।

0: जिंदगी की रीत कैसी है, लेकिन ख्यालों की सांझ कभी नहीं जुड़े, विचार नहीं कभी जुड़े और प्यार नहीं पन सकया। तो महाराज कहने धन फिर ये ना आती है, पति पत्नी ये थोड़ी आती जाते हैं कि कोई घर दे चलो कट्ठे सारी जिंदगी बतीत कर देती। धन फिर ये ना आती हैं, बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति। धन फिर कहिए जोत एक विचार है, जोत की मन मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान, ख्याल एक विचार एक। तो दोहां दे विचार एक हो सकन तीसरा चाहिए, तीजा है गुरु है कि दो विचारों की संग बना लो। कभी इसको सदके जाना है, इस दिया लावा लेनिया ने या परिक्रमा करनी है, इन्हों बार बार सजदा करना है। हे गुरुदेव विचारों की संग बनी रहे और प्यार का बूटा वधदा रहे और इस सदाचार की मह एतबार दे मह खुशबुआ बरकता हमेशा जो है डुल डुल के बाद जो है सुचलन। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन रहमत करन, बच्ची बच्चे के विचारों की सांग हमेशा बनी रहे, ताकि दोनों अपने अपने मां बाप की खुशी का सोमा बन, दोनों जो है मां बाप मान करन। अरदास से धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरण गुरु आज भी सोला बन के दोहां की सांझ हमेशा बनाई रखन। ते हम मर्यादा संयोग का बच्ची का पल्ला जिहड़ा है ओपे का सरदार गोविंदर सिंह जी पगड़ांगे लावांगे पाठ तो बाद हुक्मनामे तो बाद सिंह साहब यानी हेम सिंह जी बच्ची के बच्चे में अतीत भी जो है देंगे। इतों बात सारी जो है समाप्ति हो गई। बंदे की रस्म पराबंद भी है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3: ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੀਅਲਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਹਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ, ਜੋ ਆਪਣੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਟਾਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਰੀਅਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
2: ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।
3: ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਨੂੰ
2: 604-351-5111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 604-351-5111 ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।

सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणात गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया कर शरीर स्वस्थ कीन समय सिमरन्तु नानक

0: ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕੋ ਕੀ ਨਾਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੁੱਕਰ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਪਸ਼ੂ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, ਟੁੱਕਰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਕਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕੋ ਕੀ ਨਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਦੋ ਪੈਰ ਨੇ, ਦੋ ਹੱਥ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਮਾਨਵਤਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁਲਾਸਾ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਮਨੁੱਖ ਜੈਸੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮੰਡਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਰੰਜਨਾ ਨਦੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਅੰਬ ਤੋੜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੇਲੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾਲ? ਉਂਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਸਤੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਬੋਧ ਸਮਾਜ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਜੈਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਗਊ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਕੁਛ ਪਸ਼ੂ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਨੀ ਪਸ਼ੂ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਗਜ ਗਰਾ ਤੇ ਛੂਟਾ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾ ਲੋ ਵਰਨੋ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਤੂਟ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੈਣਾ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਭਿਕਸ਼ੂ ਕੋਲ? ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸੱਪ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਸੱਪ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕੜਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਛਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੰਡਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੰਡਦਾ, ਸੁੱਖ ਵੰਡਦਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਕੜੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਪਨੀਅਰ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਕੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਸਦੀ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਖੋਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਭੀ ਕਾ ਵੇਸਾ ਨਾ ਕੀਜੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਲੋਭੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਛਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਉਂ ਕੂ ਕਰ ਹਰ ਕਾਇਆ ਧਾਵੇ ਦੈ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣਈ ਬਖ ਅਬਖ ਸਭ ਕਰ। ਕੂਕਰ ਹਰ ਕਾਇਆ, ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ, ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ। ਕੁੱਤਾ ਜਦ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਯੋ ਲੋਭ ਸੰਗ ਔਰਾ। ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪੰਕਤੀ, ਲੋਭ ਨੇ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਲੋਭ, ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕੋ ਕੀ ਨੋਵੇਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ, ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ, ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਲੋਭ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕੋ ਕੀਨੋ ਮੇਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਚਲਾ, ਟੁੱਕਰ ਪਾਈ ਜਾਓ ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਜਾਓ ਗਊ ਪਸ਼ੂ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਗਈ ਜਾਓ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕੋ ਕੀ ਨੋਵੇ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਕਤ ਸਿਰ, ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ, ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਨਿਛਾਵਰ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਦਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਭ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਂਦਾ, ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਭ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਵੈਮ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अगों दस्त वस्ता अर्ज करते ने गुफ्तम के जानते हम दाता अज मैं सोचता सी थोड़े कदमों च की रखा की रखा सब कुछ मामूली लगता सी सब कुछ तुच्छ लगता है की रखा फिर मैं ये गुरुदेव सोचे है कि जान मेनू बड़ी प्यारी है अपनी सब तो ज्यादा जान ही प्यारी होंगी महाराज जे कबूल करो ये जान थोड़े कदमों च रख देगा गुप्तम के जान दे हम धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रवान करते हैं नंद लाल तू व्यापारी का लड़का है तेरा पिता बहुत वड्डा व्यापारी सी फिर दीवान बनया व्यापार खड़ा है देन ते लैन ते लैन ते देन लैना ही लैना है लैना ही लैना है देना कुछ नहीं लो लैना ही लैना है लैना ही लैना है देना कुछ भी नहीं लो फिर ऐसा भी है देना है लेना है लेना है देना है व्यापार व्यापार देना ही देना है बदले च कुछ भी नहीं लेना दान दाता देना ही देना है बदले च कुछ भी नहीं लेना ये मनुख नूं दाता बनांदा देना है लेना है लेना है देना है ये मनुख नूं व्यापारी बनांदा लेना ही लेना है लेना ही लेना है देना कख भी नहीं ये मनुख नूं सोम बनांदा मनुखां नूं इन्हां तिन्हां श्रेणियां च गिण सकदे आ सोम व्यापारी दाते सब तो ज्यादा भीड़ मिलेगी सोमा और कबीर कहिंदे ने सोम बंदा धन दा चौकीदार आउंदा है मालक नहीं आउंदा सोमे धन राखन को दिया मुकद गए धन मेरा ये धन तो ना आप सुख लवेगा ना बच्चिया नु सुख लैण लवेगा बस चौकीदारी करेगा ये चौकीदार ये रखवाला है ये मालक नहीं इस हिसाब नाल मनुखता नु तीन हिस्सों च वंडिया जा सकता है सोम व्यापारी दाते सतगुर कहने नंद लाल तू व्यापारी का लड़का है बहुत वड्डे व्यापारी तू कहना मैं जान दिया अर्पण करा तो फिर बदले च तेनों कुछ चाहिए भी होना है जान दे बदले तेरी कोई मंग भी होएगी हम सतगुर के अगों गलत बयानी किस तरह करे कहिंदा हां महाराज तुसी खुद पढ़िया है तुसी बहुत गहरा वेख लिया मंगते है की चाहिए तेनों जान दे इवजाने जान दे बदले च तेनों की चाहिए भाई साहब भाई नंद लाल गुफ्तम के जान दे हम इवजे यक निगाह है तो तू एक मेर दी निगाह कर दे बस बदले च मेरी जान दे मैं निछावर करन नूं तैयार किसे दे हाथ भी इतना नहीं वंड सकदे कईयां दियां नजरां बहुत कुछ वंड देंदियां बहुत कुछ वंड दे किसे दे हाथ भी इतना नहीं खो सकदे पर खिमा करनी कईयां दियां नजरां बहुत कुछ खो लैंदियां बहुत कुछ खो लैंदियां बड़ी करोपी डा देंदियां बड़ी हिंसा कर देंदियां आंखें जुबान नहीं लेकिन बेजुबान है ये बेजुबान नहीं है और ये बेहथ भी नहीं है कुछ दे भी सकती है कुछ खो भी सकते हैं इको ही दृष्टि बहुत कुछ खो लेंदी है इको ही दृष्टि बहुत कुछ झोली च पा देंदी है नानक नदरी नदर नेहा इवजे यक निगाह है तो है तू एक मेर दी निगाह कर ले बदले च ऐ मेरे गुरुदेव मैं ए जान अर बरकन नू दिया। सतगुरु ने जो जवाब दिता है वह भी सुनन योग है। गुफ्ता मया ने माव तो सौदा न मैं शरद। नंद लाल प्रेम दे सौदेबाजी नहीं आती, ये तू सौदा करता है। जे जान दे बदले भी परमात्मा मिल सकता है तो फिर परमात्मा वड्डा नहीं, तेरी जान वड्डी है। कीमत पाए ना कहा जाए, कहने वाले तेरे रह सब। मेरी जान दे बदले मैनू भगवान मिल सकता है तो मेरी जान नालों भगवान वड्डा नहीं, ये भी मैं कर। सतगुरु कहते ने फिर तू तौर और भाई साहब भाई नंद लाल सिंह के बारीक बेन ने इतना कह के सतगुरु चल पाया। तो पीछे जो बोल बोले ने नंद लाल ने सतगुरु नु सुनांदे आया, अग पेशे चशम आंब ते ना मेहर बांगु यस जानांगु यस ताजे रे दीदे जांगु यस। तो पीछे जो बोल बोले ने नंद लाल ने सतगुरु नु सुनांदे आया, अग पेशे चशम आंब ते ना मेहर बांगु यस जानांगु यस ताजे रे दीदे जांगु यस। ऐ मेरे पातशाह अज तक मैं मरदे हुए मनुख देखे सन, मुंह दे चों प्राण निकल दे, मुंह दे चों श्वास निकल दे, मुंह दे चों जान निकलती है, पर मेरी ही ते अखां चों ही जान निकल गई। तुसी मेरी नजरां तो ओझल की हो रहे हो, मेरे प्राण जा रहे, मेरी जान जा रही। अज पेशे चशम आंब ते ना मेहर बांगु यस जानांगु यस ताजे रे दीदे जांगु यस। सतगुरु कहने ने प्रेम दी कणी तू चख लई है। सतगुरु कह इतना क्या है, नंद लाल तीन दिन समाधि च रहे, रब्बी रस विच भिजे रहे, डूबे रहे। प्रेम तेरा होना ही काफी है, तू तो उंज ही चंगा लगना है। लेना नहीं तेरे को, तेतों सदके जाना कुर्बान जाना है। प्रेम पशु नू भी मनुख बना देंदा है, मनुख दे अंदर सच्ची मनुखता नू जन्म देंदा है। लोभ मनुख नू भी पशु बना देंदा है। हुण मैं अर्ज करा, प्रेम विच वासना नहीं आती, वासना मंगती है, मंग करती है। प्रेम विच निछावर होना होंदा, कुर्बान होना होंदा। इस वास्ते मैं हैरान होया सी भाई गुरदास नूं पढ़ के, उन्होंने अपनी वारां विच कवित सवैयां च लैला मजनू हीर रांझा सोनी महिवाल ससी पुन्नू इन्हां दा जिक्र किया। शायद कदी तुसी गुरु के कीर्तनियां करो कीर्तन भी सुने होवे इन्हां वारां। लैला मजनू आशकी चौ चक्की जाती, महीवाल नू सोहनी नै करदी राती। ससी पुन्नू दोस्ती ओ जात को जाती, एक आम कवि शायर ससी पुन्नू हीर रांझा लैला मजनू दे किसे लिखे तो चलो ठीक है, पर एक महान ब्रह्म ज्ञानी महान दार्शनिक जिदी बाणी नू कुंजी कह दिता गया, शब्दां नू खोल दी है, अर्थ बयान कर दी, वो इन्हां दी महिमा ते गायन करता है। एक जगह नहीं कई जगह। लैला दी दरगाह दा कुत्ता मजनू देख लुभाना, ए दूजी पौड़ी। इसने एक सूफी संत ने भी लिखा है, पै सगे बहु सीध है मजनू हल्के गोयद ऐचे सो, ਇੱਕ ਬੋਸੀ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਲਾਗਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੁੱਤਾ ਮਜਨੂੰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ। ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਫੀ ਵੀ ਲਿਖਦਾ। ਪੈ ਸਕੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਦਾ ਮਜਨੂੰ ਖਲਕੇ ਗੋਇਦ ਇੰਚੇ ਸੋ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਬਿਮਾਰ ਕੁੱਤਾ ਲਾਗਰ ਕੁੱਤਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਪਹਿਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕੁਛ ਤੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ, ਲੋਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪੈ ਸਕੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਦਾ ਮਜਨੂੰ ਹਲਕੇ ਗੋਇਦ ਇੰਚੇ ਸੋਲ, ਫਿਰ ਮਜਨੂੰ ਜੋ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਸਗੇ ਦਰ ਕੂਏ ਲੈਲਾ ਗਾਹੇ ਗਾਹੇ ਰਫਤਾ ਬੋ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਲੈਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਕ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਦੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਦੀ ਗਤ ਬਾਣ। ਤੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਸਨੇ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲੈਲਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਮਜਨੂੰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਸੁਣਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਜਨੂੰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਲਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੈਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਜਣਾਇਆ ਗਲਤ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੀ ਰਾਮ ਨਾਲ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਦਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਪ ਬੁਲੰਦ ਪਾਇਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦਾਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰੇ ਹਿਲਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਤੇ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਰਸ। ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜਦ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਵੀ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ, ਰਸਤੇ ਆਏਗਾ ਕਵਿਤਾ ਚ। ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਕਵੀ ਵੀ ਰਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਦਾਦ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਕਵੀ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जो संगीत नू समझ लै ओ दाद दे रहा है, जो इल्मे शायरी दा माहिरीन है ओ दाद दे रहा है। शायर इस वास्ते नंदलाल को लाया क्योंकि नंदलाल शायर ने कवि है। भाई साहब नू कहिंदे ने एक एक नजम तुहानू सरवण कराणी, पहले मजनू दे संबंध विच, फिर एक नजम लैला दे संबंध। पूरी वड्डी किताब लिखी सी पर सियाणे मनुख जिवें एक चावल दे दाने नू देख के सारी देखची दा अंदाजा ला लैंदे ने, ओ भी सुनाण वाला भी सियाणा सी, एक एक नजम सुनाण दा उसने कहा भाई साहब सुनन नू राजी हो। पहली नजम विच उन्हें दस्या मजनू कित्थों आया ते किस तरह प्रेम विच पै गया। इस नजम नू उसने तरन्नुम विच सुनाया, गा के लयबद्ध हो के भाई साहब जुड़ गए। फिर वो शायर कहिंदा है हुण मैं तुहानू लैला दे संबंध विच एक नजम सुनाण लगा। हुण भाई साहब हथ नाल रोकदे ने, गला भरे होया, जबान नाल उसनू नहीं रोक सकते, हथ नाल रोकदे ने। बाद जो कुछ भाई साहब ने लिखे है वो तुसी सुन लो। भाई साहब कहिंदे ने मगो अज हाले लैली बाद ले शौरी दा ऐ गोया, नंद लाल दे पागल दिल नो लैला दा किस्सा ना सुन, लैला दी नजम ना सुन। मगो अज हाले लैली बाद ले शौरी दा ऐ गोया, कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साध। मैं ते मजनू दा किस्सा सुन के अपने होश गवा बैठा, पर जे हुण तू लैला दा किस्सा सुनाया मैं अपने प्राण गवा बैठा। ना सुना, मैं नहीं सुन सकता, मेरे कोल ताब नहीं है, मेरे कोल समर्था नहीं है, मैं नहीं सुन सकता, मैं ते अपने होश गवा बैठा। ऐसा प्यार किस्सा ते उसने नजम ते मजनू दे संबंध सुनाई, सुरत जुड़ गई परमात्मा नाल। भाई साहब भाई नंद लाल प्रेम दी गल चाहे किसे दे संबंध च भी कोई सुनावे पर सुनन वाले दा उस दे नाल जुड़ना हो जांदा है जिस नाल उसका प्रेम हो। भावें उसने ते मजनू दी गल सुनाई, भाई साहब जुड़ गए प्रभु नाल। और कहिंदे ने मगो अज हाले लैली ना सुना, कितना कोमल हिरदा होवेगा, कितना प्रेम नाल भेजिया होया हिरदा होवेगा, गल मजनू दी सुनी है जुड़ गए परमात्मा नाल। परमात्मा दी बाणी सुन के भी मनुख परमात्मा नाल ना जुड़े तो हिरदे कोरे नहीं ते होर की है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गुरु दी गल सुन के भी बंदा गुरु नाल ना जुड़े, गुरु दी बाणी सुन के भी मनुख प्रभु नाल ना जुड़े, अजे हिरदे कोरे ने। मैनू कहन देना अपने लोभ को कीनो वही, ए गुरु कोई साडियां कामनावां ने तू पूरियां कर सकना है, इस करके तेरे को रांदे और तेरे नाल की मतलब, और तेरे नाल की मतलब। अपने लोभ को कीनो वही, प्रेम तेरा होना ही काफी है, तू जी बड़ा प्यारा लगता है, तेरा होना ही मिठास देंदा है, तेरा होना ही रस देंदा है, तेरा होना ही जीवन विच आनंद बरपा कर देंदा है, तेरा होना ही काफी, तैथों सदके जांदे हैं, तैथों कुर्बान जांदे हैं। ये प्रेम है, ये प्रेम पशु नूं भी मनुख बना देंदा है, मनुख ते मनुख बनेगा। ये दूजा संबंध है, पहला संबंध लोभ दा। हुणे मैं अर्ज कीती सी रिश्ते दियां संबंधां दियां तीन प्रणालियां बनिया ने, दादके नानके सहुरे। पर दार्शनिक धार्मिक विद्वान संबंधां दियां चार प्रणालियां मनदे ने, पहली लोभ, दूजी प्रेम, तीजी प्रणाली मंदन श्रद्धा। प्रेम विच बराबरी हो जाती है, यह भी मैं अर्ज करा। अगर पुत्र का पिता नाल प्रेम है ते पिता का पुत्र नाल प्रेम है, भावें उम्र का कितना ही अंतरा क्यों ना हो, बराबरी हो जाए। प्रेम दोहां नूं बराबर कर देंगे। गुरु का सिख नाल प्रेम है, सिख का गुरु नाल प्रेम है, बराबरी हो जाए। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कदम कदम ते बराबरी दित्ती है, गुरु नानक ने दित्ती है। एक निक्का जिहा नुक्ता थोड़े सामने रखा, रोज भाई लेना गुरु नानक की परिक्रमा कर देना, गुरु नानक के कदमों पर अपना मस्तक रख देना रोज। ये रोज की क्रिया सी सवेरे शाम परिक्रमा करनी, अपना मस्तक गुरु नानक के कदमों पर रख देना। पर आज गल कुछ होर हो गई, सत्ता बरवंड लिखते ने, लैने दी फेराई नानका दोही कटी। अज गुरु नानक लैने दी परिक्रमा पे कर दे और अपना मस्तक लैने दे कदमा पे रख। कल तक लैना गुरु नानक दे कदमा पे मस्तक रखता सी, अज गुरु नानक ने अपना मस्तक लैने दे कदमा पे रख। कल तक लैना परिक्रमा करता सी, अज गुरु नानक पे परिक्रमा कर देना है, बराबरी हो। प्रेम बराबरी दे देता है और गुरु दे जो बराबर हो गया गुरु हो गया। प्रेम दे यकीन जानो मनुख परमात्मा हो जाता है। परमात्मा भी वड्डा छोटा नहीं रह जाता, भगत छोटा नहीं रह जाता, प्रेमी छोटा नहीं रह जाता, परमात्मा वर्गा ही हो जाता। प्रेम बराबर बराबर कर देता है। पहला संबंध लोभ का, दूजा संबंध प्रेम का, बराबरी का। लोभ के संबंध च लैण वाला चूंकि उसका हथ नीवा हुंदा छोटा बनिया रहिंदा, वो छोटा बना बनना उसनूं अकरदा भी है। इस वास्ते उसका सिर्फ लैण का ही संबंध हुंदा, और कोई मतलब नहीं रखता। प्रेम दे बराबरी हो जाती है, छोटा वड्डा नहीं रह जाता। फिर एक तीजा संबंध है, उन्हें कहते हैं श्रद्धा का संबंध। हे गुरु तू कितनी भी बराबरी देवें फिर भी तू महान उच्चा, भावे तू बराबरी देवें। जैसे कलगीधर पातशाह कहते हैं, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। किधरे किधरे ते बराबरी नहीं उच्चा भी कर देता है। इन ही की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोह से गरीब करोर परे। इतना दर्जा दे देता है श्रद्धा। इतने मनुख बिस्माद हो जाता है, नहीं गुरु तू कितनी बराबरी देवें महान, तू कितना भी आखें तेरे मेरे च कोई अंतरा नहीं है अंतरा। तू ते सूरज है मैं एक जर्रा, तू ते सागर है मैं तो एक निक्की जी बूंद, मैं तेरे बराबर का कितने। बिस्माद नाल भर जांदा है। श्रद्धा मनुख नू देवता बना देती है, प्रेम मनुख नू मनुख बनांदा है, लोभ ते मनुख नू पशु बना देता है। या इंज कह लईए, असी संबंध बनांदे हां पशु करके, मनुख करके, देवता करके। श्रद्धा मनुख नू मनुख नहीं रहण देती, देवता बना देती, बड़ा चानना प्रदान कर देती है, बड़ी रोशनी दे देती है, बड़ा प्रकाश हृदय च हो जाता है श्रद्धा करके, भावना करके। हुण मैं अर्ज करा एक चौथा संबंध है। पहला संबंध लोभ दा, जो मनुख नू भी पशु बना देंदा, पशु ते पशु है। दूजा संबंध प्रेम दा, ये मानव दे अंदर मानवता नू जन्म देंदा। तीसरा संबंध है श्रद्धा दा, ये मनुख नू देवता बना देंदा। चौथा संबंध है भगती दा, ये मनुख नू परमात्मा बना देंदा, ईश्वर बना देंदा। भगती भगत कहिंदा है, हे प्रभु ठीक है, मैं बूंद हां तू सागर है, मैं जर्रा हां तू सूरज है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तेरी ही बूंद हां, किसी होर दी नहीं, मैं तेरी ही किरण हां, ए सूरज किसी होर दी नहीं। इस वास्ते ऐलानिया कह देंदा है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कह, तेरे ते मेरे की अंतर है, बराबरी। प्रेम दे जद बराबरी आउंदी है, मानो मानो बनदा है। भक्ति दे जद बराबरी आउंदी है, मनुख परमात्मा हो जांदा, हर का भगत सो हर ही जिया। प्रत्यक्ष रूप दे च, साकार रूप दे च, किधरे परमात्मा दे दर्शन करने, तो भगत दे दर्शन भगवान दे दर्शन। संत राम में भेद कछ नाही, एक जन कई मैं लाख करोरी। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, संत ते राम विच कोई भेद नहीं, ये दोवें इक्को ही है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, भगत रविदास। कनक कटक जल तरंग जैसा, तू एक सोने की शिला है, मैं उसो बनया होया गहना। तू सागर है, मैं उसकी एक तरंग हां, लहर, ठीक है मैं लहर हां, पर मैं तेरी ही लहर, ठीक है मैं किरण हां, पर मैं ए सूरज तेरी ही किरण हां, तेरे ते मेरे च की अंतर। इत्थे भगत अपने विच भगवान दे दर्शन कर। भगत कबीर कहंदे ने, बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई। मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना, ईश्वर होना, इस तो बिना इसकी तृप्ति नहीं होगी। भटकदा भी रहेगा, जमदा ते मरदा भी रहेगा, दुखी भी रहेगा, संतापग्रस्त भी रहेगा, वक्ती तौर पर आनंद रस भी बनता रहेगा, लेकिन कुरलांदा भी रहेगा। क्योंकि जितने चिर तक मंजिल की प्राप्ति नहीं आती, मंजिल की है मनुख का परमात्मा होना। मनुख हुक्मरान हो गया, धनवान हो गया, छोटी का साइंटिस्ट हो गया, बड़े तो बड़ा पंडित हो गया, विद्वान हो गया, ये जीवन का लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य है मनुख का भगवान होना। शमस तबरेज खुदा दे अगों प्रार्थना करते हैं, मन तो शुदी तो मन शुदम, मन जान शुदी तो तन शुदम, ई कस ना गोयद बाद रही, मन दी गरम तो दी गरी। बड़ा एक महान फकीर होया ईरान दे, कहिंदा खुदा तू मैं हो जावे, मैं तू हो जावां, मैं तन हो जावा, तू जान हो जावे, फिर कोई ए ना आखे खुदा कोई हो रहे ते शमस तबरेज कोई हो। ई कस ना गोयद बाद अजी, मन दी गरम तो दी गरी। तू कुछ हो रहे मैं कोई हो रहा, ऐसा कोई ना आखे, इस तरह आपा हो जाइए। तू ते मंग पिया करदा है, मैं तन हो जावा तू जान हो जावे, मैं तू हो जावा तू मैं हो जावे, फिर कोई ये ना आखे कि असी अलग अलग हाँ, दीगर। रविदास कहने ने अपन ते एक हो गए, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। सच्ची तृप्ति उस दिन मिलती है मनुख नूं जद मनुख परमात्मा हो जाता। जैसे परमात्मा के जन्मना वास्ते मरना नहीं है। ऐसे मनुख के अंदर जीवन की लालसा खत्म हो जाती है, मरण का भय भी खत्म हो जाता। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। तू सर्व जिया प्रित पाले लेखे सास जरास। जीवन की आस उतने चिर तक बनी रहती है जितने चिर तक इस जीवन तो कोई उच्चा जीवन ना मिले। मरण का भय भी उतने चिर तक बनिया रहता है जितने चिर तक इस जिंदगी तो कोई उच्ची जिंदगी नहीं मिलती। मौत का भय है, इस गल का सबूत है, अजे इसनो जीवन प्राप्त नहीं होता। जीवन की लालसा इस गल का सबूत है, अजे उसनु जीवन मिलिया ही नहीं जिन्हों परम जीवन कहते। जिंदगी लोभ दे बतीत हो रही है, पै दे बतीत हो रही है। और मैं अर्ज करा, मनुख किधरे झुकदा भी है या ते लोभ करके झुकदा या पै करके झुकदा है। लोभ करके झुकदा इस तो कुछ मिल सकता है, बह करके झुकदा इस वास्ते झुकदा कुछ खो सकता है। खोवे ना तो झुक जाइए, सजदा पिया करदा खोवे ना। या ते डर दा मारा झुकदा या लोभ दा मारा जो है झुकदा। झुकण दे ए दो ही कारण होंदे ने। इस जीवन तो जब उच्चा जीवन मिल जाता है, जीवन की लालसा नहीं रह जाती, मरण का भय नहीं रह। लोभ ते भय दोवें समाप्त होंदिया ही मनुख परमात्मा का रूप हो जाता है, ईश्वर का रूप हो जाता है। ये चार तरह के संबंध ने। किस तरह के संबंध विच असी जी रहे हैं? शेख सादी साहब कहते ने, तू खुद ब मुनसब शुद्ध, अपना मुनसब आप बन, अपना फैसला आप कर। तू पशुआं वाले संबंध जोड़े ने, मनुखां वाले जोड़े ने, देवतियां वाले जोड़े ने कि रब वाले जोड़े ने। तू किस तल ते जी रहे हैं? पशु दे तल ते जी रहे हैं, मानव दे तल ते जी रहे हैं, देवते दे तल ते, फरिश्ते दे तल ते जी रहे हैं कि प्रभु दे तल ते जी रहे हैं? ये फैसला दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा साढ़े मन दे चात नहीं मार सकता। तो खुद बा मनसब शब्द, अपना मनसब आप बना। जितने चिर तक मनुख को रब वाला जीवन प्राप्त नहीं होया, ये जमदा भी रहेगा, मरदा भी रहेगा, दुखी भी रहेगा, संतापग्रस्त भी रहेगा। मौज का सागर हो जाना तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। ये बूंद का भविष्य है सागर हो जाना, ये किरण का भविष्य है सूरज हो जाना, ये मनुख का भविष्य है परमात्मा हो जाना। मन तो शोधी तो मन शुद्ध, मन जान शोधी तो तन शुद्धम। ई कस ना गोयद बाद दी, मन दी गरम तो दी गरी। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मेहरामत करन, बख्शिश करन। इस तरह की प्यास, इस तरह की तड़प अंदर पैदा होवे कि परमात्मा होना है। कबीर ते कहन मैं हो गया, बिगड़ो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कते ना जाए। मैं ते सच हो गया, हुण सच ते परमात्मा है। कबीर कहने आपां सच हो गए, हुण मिथिया नहीं रहे, हुण मिट नहीं सकते, आपां सच हो गए, सच दा रूप हो गया। इस वास्ते कबीर ते ऐलानिया कहंदे ने, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। सतगुर रहमत करन, ये सुवाद इसे जीवन दे सानू प्राप्त होवे ताकि बार बार जन्म मरण तो छुटकारा मिले। कितनी सेवा इस वक्त प्रवान करनी, कल दी हाजिरी भर के आप तो फिर छुट्टियां लवेंगे। अगला प्रोग्राम दासां दा, दो दिन का झांसी, एक दिन का ग्वालियर है, एक दिन का इटावा है, ते दो दिन कलकत्ते तो बाद फिर सारा टूर पंजाब का है। धन गुरु अंगद देव जी महाराज के संबंध में प्रोग्राम चलने ने, नामवर जथे बैठे हुए ने, बड़े सोहने सोहने विचारक बैठे हुए ने। बड़े चरणों में बेनती है, सारियां नूं सरवण करके जो है जायो। और सारे खिड़े हुए फुल ने अपनी अपनी महक लेके आए ने, जरूर बैठ के इन्हां नूं सरवण करना, कोई बहुत ज्यादा समा नहीं होया। सारियां दा बार बार धन्यवाद। बुल चुकदी चवां, वाहेगुरू जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया, ज्यों कस्तूरी मृग न जाने भ्रमदा भरम भुलाया। मनुख दे प्राणा विच जिहड़ी प्रबल प्यास है वो जीवन दी है, सदीवी जीवन दी है। फिर जीवन तो बाद जीवन लई सारियां लोड़ां सारियां मंगा, लेकिन प्रबल ते प्रथम प्यास जीवन दी है। भय भी केवल मौत दा ही है और कोई भय नहीं। जिथे भी मनुख भयभीत होवे समझ लो कुछ ना कुछ इस दे खत्म होने वाला है या खत्म होने की संभावना। भय उसे दई है। चाहत लालसा जीवन दी और प्रबल भय मौत दा। जे भारत दे सनातन चिंतन नु वेखिए, उपनिषदां दे ऋषियां नु वेखिए, पुराणक प्रसंगां नु देखिए, तो जीवन दा दाता विष्णु, मौत दे देण वाला शिव जी। ब्रह्मे ने संसार बनाया, उदा कोई मंदिर नहीं। बन गया संसार सो बन गया, जन्म हो गया सो हो गया। हुण ते लालसा जीवन दी ते भय मौत दा, तो सारे देश विच विष्णु दी पूजा शिव जी दी पूजा हिंदू जगत दे। विष्णु नाल लक्ष्मी है, जीवन ते जीवन दिया सारियां लोड़ां दी पूर्ति। पर शिवजी दे गले देखते फनियर नाग ने, मुर्दियां दी खोपड़ियां दी माला है। शमशान घाट दा शिवजी दा वह सेवा है, मौत दा देवता शमशान नाल संबंधित है, जीवन दा देवता लक्ष्मी नाल पदार्था नाल संबंधित है, एक प्रतीक है। लालसा परबल जीवन दी है, भय परबल मौत दा है। जीवन दे देवते दी पूजा इस वास्ते जीवन बनया रहे बनया रहे बनया रहे। मौत दे देवते दी पूजा इस वास्ते कि कम से कम मौत साढ़े घर ना आवे। एक दी पूजा इस वास्ते तू साढ़े घर आ, क्योंकि उतना लक्ष्मी है। एक दी पूजा इस वास्ते कम से कम तू साढ़ा घर छोड़ दे, क्योंकि तेरे गले दे सप ने, मुर्दियां दी खोपड़ी है और तेरा वसेबा शमशान है। बहुत सुंदर ये प्रतीक चुने हैं मनुख दी कमजोरी।

दान करके आंदा अंदर कहना मैं इना कुछ दे आया मेनू की देगा। बाहर दाता बनिया बैठा अंदर मंगता बनिया बैठा है। हर दानी दे अंदर भिखारी लुकिया हुआ है। मेनू बख्श दिया जी जगराम कोल ते रात नू कंबल सटदा पे ते नाल कहना मेरे कंबलां दा काम चंगा चल पूगा। मंगता ही है ना। हां आपका आप जी सोचोगे भी भाई साहब कह रहे हैं फिर दान पुण्य करना चाहिए। नहीं महाराज कहते ने एक काम कर के हथों दे के भला मनाए मंग ना रख। हथों दे के कह मेरे दाता तू तरस कीता मेरे इस गरीब तो सेवा तू ले ली। महाराज जी वचन कर दे के अपने हथों दे के भला मनांदा वे सार बंदा खिमा करियो जेड़ा किसे नू कुछ दे रहा है वो आउटपुट ए आस करके दे रहा है मेनू की वापस आएगा। रब कहिंदा तू मेनू गाला भी कड़ी जा मैं कोई आउटपुट नहीं वेखनी मैं तेनू तां भी दिया मैं तेरे तो की मांगना। पढ़ो कि गुरु गोविंद सिंह दा वचन दीनन की प्रतपाल करे नित संत उभार गनी मन गार है सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उभार गनी मन गार है पश पशु नग नाग निरात सर्व समय सबको प्रतपार है पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं नहीं कर्म विचार है। ओ नहीं वेखदा बंदा पापी ए विषयी ए कामी क्रोधी ना ना वो कहना ना ये जे वैगुरु जी इस तरह वेखन लग पैणगे ना ते दुनिया मर जाओगी। एडा वड्डा फिराक दे दास ने ते एक बार कथा कर दिया क्या सी के अरदास च एक लफ्ज आउंदा है देख के अणडिठ कीता एक रब देख के अणडिठ करदा है दूजा गुरु देख के अणडिठ करदा है तीसरा ब्रह्म ज्ञानी खालसा देख के अणडिठ करदा है नहीं तो साडा समाज ते अणडिठियां नूं भी डिठे वाले करदा पिया जो नहीं दिस गया उन्होंने भी लोकी प्रचारी जा रहे। हजूर देश अमृत बचन वाले महाराज कहने पोखता है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचार है। दीन दयाल दया निध सो करता चिंता करे दीन दयाल दया निध दोखन देखता है पता है भी यदि करतूत की ये की करता पे। मैं सच्ची बेनती कर रहा कि मेरे तुहाडे अंदर दा वैगुरु नूं पता नहीं एदू वड्डा पर्दे ढकण वाला कोई नहीं जी। जे ओ पर्दे नशर करन ते आ जाए ते कोई घर नहीं जुड़िया रहेगा सच जे। इत्थे प्यो नाल पुत्तर ने नहीं रहना इस्त्री ने पति नाल नहीं रहना भैन ने भरा नेड़े नहीं लगना। ओ कहिंदा नहीं नहीं ए मेरी बनाए ने ना चल कोई नहीं पर्दे पा के ढक्की रखो इन्हां दा काम चली जाएगा। दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है पर देत ना हार है। एक सवैया होर काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना भय है। वो किसे कामना दीन थोड़ा दे रहे। मैं बेनती करा जेड़ा बंदा कदी गुरुद्वारे नहीं गया रब तां उहनूं भी रोटी देंदा पे उहनूं नहीं कि तू मैनूं बंदगी कर ना कर तू। वेखो ये सानू है असीं कहांगे यार जे आ लोक ना आए ते मेरे फील्ड दा की बनेगा आ ना होया ते मेरी वोट दा की बनेगा। वो कहिंदा तुसीं सारे मेरे विरुद्ध च भुगत जाओ मैं फिर भी कल्ले दा कल्ला पूरा ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਸਕੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਕੋਈ ਨੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ सारे शरीर वालियां दी चिंता करी बैठा। आ दिसदा कोई नहीं अन दिसदा दिसदे नूं पाली जांदा भाई। काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना पै है दे बीन सने सबो तन। दे बीन अपनी कोई बॉडी नहीं सारिया शरीरां नूं प्यार करदे दे बीन सने सबो तन ने ब्रखत अगे अच्छा है घर भी कोई नहीं मोह तो भी रहत है। महाराज कहिंदे ने काहे को डोलत है तुमरी शुद्ध सुंदर श्री पद्मा पतले। मैं फिर बेनती करांगा सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। मेरे गुरु गोविंद सिंह एक उन्होंने रचना चो मैं होर अर्ज करनी चाहना। पुरातन समय पता की सी जी जदो राजे जा बादशाह नू कोई लैटर चिट्ठी लिखी जांदी सी ओदे लई पहला बड़े सत्कार ते विशेषण लाए जांदे सन। जहां पना भगवान

ईश्वर दो आलमां दा मालिक इथों तक रिजक दाता परजा पालक सारे सन शब्द। सोचना जिदन सतगुरां ने जफरनामा लिखिया किसे थां ते मैनूं दसो जफरनामे च विशेषण ला के क्या कि औरंगजेब तू लोकां नूं रिजक दान है, तू रिजक दाता है, तू परजा पालक है। और देखो इस इन्हां शेरां नूं पढ़ के पहले शेर विच क्या अज तक लोग तेनूं चिट्ठियां लिखदे ने परजा पालक रिजक दाता जां पना कहिंदे ने मैं पहले शेर च तेरी गल नहीं करांगा, पहले शेर च मैं उस रब की गल करांगा जिहड़ा सब नूं रिजक देण वाला जिन्हें तेनूं भी राज दिता। कमाल ए करामात कायम करीम रजा बख्श राजक रिहाकुन रहीम जिहड़ा सब नूं रिजक देण वाला है परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु। गुरु नानक साहब दे बोल ने कहन लगे ओ परमात्मा कला सानू ही नहीं आ रुख दे उत्ते आलना है, आलने नूं बीजड़े ने बना दिता जलो चलो वह सारा पंछी ने बनाया ओदे आलने च हाथ मारो कोई सोना नहीं कोई हीरे नहीं कोई मोती नहीं कोई दाणिया दा ढेर नहीं की ये कला पंछी ओदे निक्के जे बच्चे ओनू पुछिए तेनू चिंता नहीं आ जिहड़े निक्के निक्के बोट तेरे निक्के निक्के बच्चे पए ने जिन्हां दे खंभ भी निकले ते महाराज कहिंदे ने पंछी कहिंदा चिंता काहदू करां जिन्हें सवेरे जिंदगी दित्ती है मेरे ते बच्चियां नूं रोजी भी दी देगा। महाराज कहिंदे ने करते नूं चिंता है ये सतगुरु दे अमृत बोल ने हजूर दे बचन ने ना रिजक दस्त आ कसे मांझ की वार। चलो कुछ लफजे च फारसी दे ना रिजक दस्त आ कसे दस्त दा अर्थ खत साडा रिजक रब तो बिना किसी होर दे आ हाथ विच नहीं सिर्फ सो करता चिंता करे ना रिजक दस्त आ कसे हामा रा एक आस वसे खमारा पाठ कथा नहीं। फारसी विच खमा दा अर्थ सब ते रा दा अर्थ नू एदा अर्थ होगा सानू सारिया नू रिजक देन वाला केवल एक करता पुरख वाहिगुरु। ना रिजक दस्त आ कसे खमा रा एक आस वसे सानू सब नू एक दी आस है अस्त एक दिगर कोई एक तुई एक तुई। महाराज कहते ना परंदे ग्रह जर उड़न वाले पंछियां कोल केड़ा धन ते केड़ा रोटी दा समान परंदा ना ग्रह सर दरख्त आप आस कर रुख ते बैठा पानी। मैं फिर बेनती करा पानी दे कंडियां ते बैठा रुखां ते बैठे परंदा ना ग्रह सर दरख्त आप आस कर देहांत सुई एक तुई सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। थोड़े जे अर्थ आप अज कर जाइए महाराज कहिंदे ने फिर बंदा की करे इस गल नूं ध्यान नाल सुने। चलो अगे तरत सारे हो गए ना जी सारे काम वाहिगुरु दे कीते पुरखां बिरथां तीर्थां तट्टां मेघां खेतां इच इह नहीं कहा बंदिया तू की करना। उन्हें कहा सारी सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता इहदे च इह नहीं कहा बंदे तू की कर। अगे महाराज जी ने जिहड़ा इह वचन कीता कि करते ने सब कुछ बनाया सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। हुण असी की करिए मेरे बाबा नानक जी कमाल कर दिती कहन लगे तिस जोहारी स्वस्त तिस ते दो लफज एक तां इहदा पाठ औंकड़ ला के नहीं करना पाठ इत्थे जोहारी है जोहारी नहीं घोड़ा ला के पाठ है औंकड़ ला के नहीं जजे नू घोड़ा हाए नू कन्ना रारे नू बिहारी जोहारी ते एदा पाठ जुआरी भी नहीं करना। जे जुआरी कई वारी सुनी दा ना जी मैं किसे इंडिविजुअल बंदे ते तर्क नहीं कर रहा पर अक्सर जे जुआरी पाठ करोगे ते जुआ खेडन वाला बन जाएगा ते जे जुहारी पाठ करोगे ते एदा अर्थ मत्था टेकना बन जाएगा नमस्कार करने तिस जोहारी। महाराज कहने तू चिंता ना कर सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तू की कर बस एक स्याणा पुत्र बन के पिता दे सामने मत्थे टेकेगा ओनू नमस्कार कर ओदा शुकराना कर बस आ जे सलोक दा तत् भाव कह लवा तू चिंता ना कर तिस जोहारी स्वस्थ तिस ए लफ्ज़ है स्वस्थ एदा अर्थ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਸਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਲਿਆਣ, ਮੰਗਲਮਈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਮ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਕਰਤੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਂ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵਾਹ ਤੇਰੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਸ, ਐਵੇਂ ਚੋਖੇ ਚੋਖੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਜਿਨੇ ਜਗਤ ਉਪਾ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇ, ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਲਮਈ ਤੂੰ, ਕਲਿਆਣਮਈ ਕਹਿ, ਤਨ ਤਨ ਤੇਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਹੀ ਜਾਓ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜੇ। ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਭਗ। ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਰਬਾਰ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਵੈਸ ਚ ਨਾ ਲਿਜਾਓ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਸੀਐਮ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਪੀਐਮ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ,

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई है 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
2: So the Musia, baby. Yeah.
3: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट, पेशेंस

परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हाजूरी अंदर उन्हां महान पवित्र आत्मावां दी याद विच जिन्हां ने इस मृत मंडल दी यात्रा कर दिया होया सिमरन और सेवा ते अतुट गुरु भगती नू अपने जीवन दा आधार बनाया उन्हां नू

0: नानक कहूं नसी जई बिन नामे पत जाए अष्टपदी।
1: दस बसूले पाछे पावे
0: एक बस्त कारण बिखो टकवावे
1: एक पीना दे दस पी हिर ले
0: तो मूड़ा को कहां करे
1: जिस ठाकुर से ना ही चारा
0: ठाकुर की जय सद नमस्कार
1: जाते मन लगा प्रमीठा
0: सर्व सुखता हु मन बुठा
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया
0: सर्व सुख नानक तिन पाया
1: अगंत शाह अपनी दे रास
0: हाथ पीत बरते अनंत उलास
1: अपनी ईमान कश बहुर शाह हो ले
0: अज्ञानी मन रोस करे
1: अपनी प्रतीत आप ही गोवे
0: और उसका विश्वास न हो
1: बस्ते सागे रखे
0: रोकी आज्ञा मन मथ
1: उसके चौगन करे निहाल
0: नानक साहिब सदा दयाल
1: नानक भांत माया के हित
0: सरपर होवत जान अनेत
1: बिरख की छाया स्यों रंग लावे
0: ओ बिन सह ओ मन पछतावे
1: जो दिस सो चालन हार
0: लपटर होत अंधा धार
1: कटाऊ स्यों जो लावे नेह
0: ताको हाथ न आवे के
1: मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई
0: कर कृपा नानक आप ले लाई
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सपाया
0: मिथ्या होमे ममता माया
1: मिथ्या राज जोगन धन माल
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल
1: मिथ्या
0: मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता
1: मिथ्या ध्रोह मोह अभिमान
0: मिथ्या आप से ऊपर कर्त गुमान
1: सिर भक्त साध की शरण
0: नानक जप जप जीवै हर के चरण
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे
0: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरण
1: मिथ्या नेत्र पेकत पात्रया रूपाद
0: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद
1: मिथ्या जन्म पर विकार कुता वहे
0: मिथ्या मन पर लोभ लबावे
1: मिथ्या तन ही पर उपकारा
0: मिथ्या बास लेत विकारा
1: बिन भूते मिथ्या सब भये
0: सफल दे नानक हर हर नाम लये
1: मिथि साक्त की आरजा
0: साच बिना कह होत सुचा
1: बिरसा नाम बिना तर अंध
0: मुख्यावतता कह दुर्गंध
1: सिमरन।

हिंदू मुसलमान रल के रामनवमी का त्योहार मनाते हुए अंग्रेजी साम्राज्य जिवें जड़ा हिला रहे ने उस वक्त का नक्शा आप जी वडाले का

फल लीटर शहर दे कोई बणत बना के एक किचलू दूजा सत पाल कर वेच बला के एक किचलू दूजा सत पाल कर

0: परवान
1: प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान
0: प्रभ को सिमरे से बेहमो ताजे
1: प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे
0: प्रभ को सिमरे से सुखवासी
1: प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी
0: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला
1: नानक जन की मंगेर वाला
0: प्रभ को सिमरे से पारि उपकारी
2: प्रभ को सिमरे तिन सत बरहारी
0: प्रभ को सिमरे
3: तिन शुरू करो
0: गौरी सुखमनी महला पांचवा श्लोक एक ओंकार।

0: सिमरन कबहु का प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे
1: प्रभु कै सिमरन कबहु न छूरे
0: प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी
1: प्रभु कै सिमरन सहज सुहानी
0: प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन
1: प्रभु कै सिमरन कमल विकासन
0: प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार
1: प्रभु सिमरन

0: हर जन के ओट सताड़ी
1: हर प्रताप जन हर न जाने
0: पोत पोत जन हर रस राते
1: सुन समाज नाम रस माते
0: आठ पहर जन हर हर जपे
1: हर का पंथ प्रगट नहीं छपे
0: हर की भगत मुक्त बो करे
1: नानक जन संगे ते धरे
0: मार जाते हर को नामा
1: काम तेन हर हर गुण गावा
0: सब ते उत्तम हर की कथा
1: नाम संग जात दुख दसा
0: नाम की महिमा संत रद बसे
1: संत प्रताप जोग सब नसे
0: सत का

0: विचार
1: नानक कर्म नाम जपिए कपार
0: खंड पृथ्वी फिरे चर जीवे
1: महावास तपिसर थीवे
0: अगन महे होमत प्राण
1: तन त्यासव है अर कुम्भान
0: बोली कर्म करे वासन
1: जैन मार्ग संयम्यार सागन
0: निमक निमक कर शरीर कटावे
1: तम्बी हमने है न जाए
0: नाम संसार कशना है
1: नानक गौरव नाम जपत जत पाए
0: मन कामना तीर्थ दे छुट्टे।

0: उमरी अस्तत तुम ते होए
1: ज्ञान केवल न जान सोए
0: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
1: हर को नाम जप निर्बल कर्म
0: क्रिया में उत्तम क्रिया
1: साध संग धर्म तुम ले लिया
0: उद्यम में उद्यम पला
1: हर का नाम जपो जी सदा
0: वाणी में अमृत वाणी
1: हर को जसो

0: आर व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पया ऊपर साक्षैन यो निर्गुण गुण कशु न बुझे
1: तो नानक
0: प्रसाद तर ऊपर सुख बस है प्रसाद पी वह शीत जला प्रसाद भोगे सब रसा
1: बसा
0: हस्तव कर नेत्र रसना ऐसे दुख मूड अंध व्यापे आद अंत जो रख।

0: की टहल पाव है दर्ग है मान
1: इसे बसारे मुगद
0: सदा सदा यो पूलन हार संध्या को डी संग रचै
1: साथ छोड़ चूर संग मचै
0: जो छड़ ना सो अस्थिर कर माने
1: जो होवन सो दूर रहे
0: छोड़ जाए किसका श्रम करे
1: संग सहाय जस पर है
0: चंदन लेप उतारे तुए
1: लगा पीत प्रसन्न संग होए
0: अंध कूप में बतत विकराल
1: नानक काट ले हो प्रभु यार
0: तूत पशु की मानस जात
1: लोक पिचारा रे रात
0: बाहर वेख अंतर मल माया
1: सब सुनाई कछु कहे छुपाया
0: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान
1: अंतर व्यापे रोग स्वान
0: अंतर अगन बाहर तन सुहा
1: नल पाथर कैसे तरे रहा
0: राके अंतर बसे प्रभु आप
1: नानक के जन सहज समाप
0: सुन अंधा कैसे मार्ग पावे
1: आगे हो ओढ़ ने भावे
0: वहां बाजार से बुझे डोरा
1: यस कहिए तो समझे पूरा
0: वहां बिसन पद गावे गुंग
1: जतन करे तो भी सरभंग
0: है पिंगल पर्वत पर भवन
1: नहीं हो तो हां उस हवन।

0: सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए
1: एक बिना जो खेती आए
0: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ
1: नानक दा के बल बल जाओ
0: गहत अवर कुश अवर।

0: जाता
1: नानक कौन जन जन पराता
0: करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने
1: अपना किया आपे माने
0: आपे आप करत न बेरा
1: किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा
0: पाव स्याणप सगल ते रहत
1: सब जाने आत्म की रहत
0: जिस पावे तिस

0: जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे
1: माहे
0: जय प्रसाद सुगंधित तन लाभ है जय प्रसाद बस है सुख मंदिर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना जय प्रसाद रंग रस भोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हडाव है जय प्रसाद सुख सेज सोई जय जय प्रसाद तुझ सब को माने जय प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: केवल
0: प्रभु जी जपत दर्ग है मान पाव है जय प्रसाद आरोग कंचन देही जय प्रसाद तेरा ओला रहत
1: पावे हर हर
0: जस जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके जय प्रसाद तुझ को ना पहुँचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह जय प्रसाद अभूखण बहरी जय जय प्रसाद असब हस्त असवारी जय प्रसाद बाग मिलख तना
1: जिन
0: तेरी मन बनत बनाई
1: सह
0: त्याय जो एक अलख है
1: जय
0: प्रसाद करहे पुन बहुदान
1: जय
0: प्रसाद तू आचार व्यवहारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: जय
0: प्रसाद तेरी नीकी जात जय प्रसाद तेरी पत
1: रहे
0: जय प्रसाद सुनहे कर्ण नाद
1: जय
0: प्रसाद बोलहे अमृत रसना
1: जय प्रसाद सुख सहजे बसना
0: जय प्रसाद हास्त कर चल है
1: जय प्रसाद संपूर्ण फले
0: जय प्रसाद परम गत पाव है
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे
0: ऐसा प्रभु त्याग अबर कत लागो
1: प्रसाद नानक मन जागो
0: जय प्रसाद तू

0: सार के संघ मुख उज्जवल होता,
1: सार संघ मन सलीख होता,
0: सार के संग मिटे अभिमान,
1: सार के संग प्रगटे सो ज्ञान,
0: सार के संग पूजे प्रभ नेरा,
1: सार संग सब होत मेरा,
0: सार के संग पाए नाम रतन,
1: सार के संग ऊपर जतन,
0: सार की महिमा बरने कान प्राणी,
1: नानक सार की शोभा परमानंद समानी,
0: सार के संग अगोचर मिले,
1: सार के संग सदा पर खुले,
0: सार के संग आवे बस पंचा,
1: सार संग अमृत रस पंचा,
0: सार संग होए सबकी रेना,
1: सार के संग मनोहर बैना,
0: सार के संग न कतहु तावे,
1: सार संग सत मन पावे,
0: सार के संग माया ते पिन,
1: सार संग नानक प्रभु सो प्रसन्न।

0: साध के संग नाही को मंदा,
1: साध संग जाने परमानंद,
0: साध के संग नाही होताप,
1: साध के संग तजे सब आप,
0: आपे जाने साध बढ़ाई,
1: नानक साध प्रभु कह आई,
0: साध के संग न कब हूं तावे,
1: साध के संग सदा सुख पावे,
0: साध संग बस्त अगोचर लहे,
1: साधु के संग अजर सहे,
0: साध के संग बसे थान ऊंचे,
1: साधु के संग मैं पहुंचे,
0: साध के संग दड़े सब धर्म,
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
0: साध के संग पाए नाम निदान,
1: नानक साधु के करवान,
0: साध के संग सब कुल उधार,
1: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे,
0: साधु के संग सोतन पावे,
1: ये संदे संग को बरसावे,
0: साध संग धर्म राय करे सेवा,
1: साध के संग को
0: साधु के संग पाप पलायन,
1: साध संग अमृत गुण गायन,
0: साध के संग सर्वथान गम,
1: नानक साध के संग सफल जन्म,
0: साध के संग नहीं कछु काल,
1: दर्शन भेट तोत निहाल,
0: साध के संग कलूखत हरे,
1: साध के संग नरक पर हरे,
0: साध के संग इहा उहा सोहेला,
1: साध संग बिछड़त हर मिला,
0: जो इच्छे सोई फल पावे,
1: साध के संग न मिलता जावे,
0: पार ब्रह्म साध रिद बसे,
1: नानक उतरे साध सुन रसे,
0: साध के संग सुनो हर नाव,
1: साध संग हर के गुण गाओ,
0: साध के संग न मनते बिसरे,
1: साध संग सर पर निस्तरे,
0: साध के संग लगे प्रभ मीठा,
1: साधु के संग कट कट लीठा,
0: साध संग पै आज्ञाकारी,
1: साध संग कट गई हमारी,
0: साध के संग मिटे सब रोग,
1: नानक साध मिटे संयोग,
0: साध की महिमा वेदना जाने,
1: चेता सुने ते ताव के आने,
0: साध की उपमा तय

0: हम ज्ञानी के दृष्ट समान
1: जैसे राज राम को लागे दुर्भवान
0: हम ज्ञानी के धीरज एक
1: योगस्था को खोदे को चंदन लेकर
0: हम ज्ञानी का हे गनाओ
1: नानक जो पाव का सहज स्वभाव
0: हम ज्ञानी नर्मल ते नर्मला
1: जैसे नैर न लागे जला
0: हम ज्ञानी के मन होए परगास
1: जैसे तारु परगास
0: हम ज्ञानी के भीतर सतर समान
1: ज्ञानी के नहीं अभिमान।

0: राम ज्ञानी के मन परमानंद
1: ज्ञानी के सदानंद
0: राम ज्ञानी सुख सहजन वास राम ज्ञानी ब्रह्म का वेता
1: राम ज्ञानी एक संगीता
0: राम ज्ञानी के हुए अचिंत
1: राम ज्ञानी का निर्मल मंत
0: राम ज्ञानी जस करे प्रव्याप
1: राम ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: राम ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये
1: राम ज्ञानी को बल बल जाइए
0: राम ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: राम ज्ञानी आप परमेश्वर
0: राम ज्ञानी की कीमत ना है
1: राम ज्ञानी के सदमान है
0: राम ज्ञानी का कौन जाने भेद
1: राम ज्ञानी को सदा देश
0: राम ज्ञानी का कथिया न जाय अध्यक्षर
1: राम ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: राम ज्ञानी की कीमत कौन बखाने
1: राम ज्ञानी की गत राम ज्ञानी जाने
0: राम ज्ञानी का अंत न पार
1: राम ज्ञानी को सदा नाम सार
0: राम ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता
1: राम ज्ञानी सर जीव नहीं मरता
0: राम ज्ञानी मुक्त जगत जी का दाता
1: राम ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
0: राम ज्ञानी अनाथ का नाथ
1: राम ज्ञानी का सर्व ऊपर हाथ
0: राम ज्ञानी का सगले आकार।

0: की आज्ञा आत्महतावे
1: जीवन मुक्त हो पावे
0: सहर्खत सास सोग
1: सदानंद नहीं योग
0: सास वारन तैसी अस माटी
1: तैसा घर तैसी बेखाटी
0: तैसा मान तैसा अवमान
1: तैसा रंग तैसा रंगान
0: बरताए साई जोगत
1: नान जो पर्त कहिए जीवन मुक्त।

0: कई कोट पवन पानी वै संतर
1: कई कोट देश को मंडल
0: कई कोट ससियर सूर नक्षत्र
1: कई कोट देव राम इंद्र सर शतर
0: सगल समग्री अपने सूत धारै
1: नानक जिस पावै।

0: तेई कोट पार ब्रह्म के दास
1: हो बचा तम परदास
0: तेई कोट तत् के भेते
1: सदा निहारे को निस्त्रे
0: तेई कोट नाम रस पीव है
1: अमर भय सत्संगी जीव है
0: तेई कोट नाम गुण गाव है
1: आत्म रस सुख सहज

अभिमान जो जाने में जोवन पंत आपस को कर्म पंत कहावे धन भूमिका जो करे गुमान।

जब लग जाने मुझ ते कश होए जब एह जाने मैं किश करता जब तारे को बैरी मीत जब लग मोह मगन संग माए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे सहस खट्टे लख कोठ धावे अनक भोग बिखिया के करे बिना संतोख नहीं को राजे नाम रंग सर्व सुख होए कर्ण करावण आपे आप कर्ण करावण करने हार जैसी दृष्ट करे तैसा होए जो किश किन्नो सो अपने

मन में है आप मन अपने माहे सत सत सत प्रभ स्वामी सच सच सच सब कीना भला भला भला तेरा रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी।

0: जिस घर पर साध टूटे हारोग
1: नान सोजन सदारोग
0: मंदर का था मैं थमन
1: यो बोल का शब्द मन है समन
0: खान नाव चढ़त
1: रानी गुर चरण रक्त निस्तर
0: अंधकार दीपक प्रगास
1: गुर दर्शन देख मन होए विलास
0: महाध्यान में मार्ग पावे
1: यो साधु संग में जोत पड़ा है
0: संतन की भाषा दूर
1: दान किया लोचा पूर
0: मूर्ख काहे बिल लाया भूख सुख प्रभ देवन हार
1: अगर त्याग तू से सार
0: कश करे सोई सुख मान
1: पूरा काहे बिल जान
0: बसताई तेरे संग
1: लाटरे हो रस लोगी पतंग
0: राम नाम जप हृदय मह
1: नानक पास से की कर जाए
0: सब खर को लेन तू आया
1: राम नाम संग कर पाया
0: मान लिहो

0: परन जाका नेत्र फोर
1: जिसका मंत्र न जाने होर
0: आनंद रूप मंगल सद जाके राज में राज जोग में जोगी
1: में
0: आए ध्याए भक्त है सुख पाया।

0: रंग रात जन रहे
1: के बचन पदार्थ रहे
0: दाते दुख कट
1: नारे संग तरह संसार
0: का सेवक सो बड़ भागी।

0: की मत ले।
1: जिस विश्व गुर का मन माने
0: परमेश्वर की बात जाने,
1: तो सतगुर जिस हृदय हर नाओ सर्व निदान जी का दाता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म सहस स्यान पलया न जाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत भेटत संग राम गुण रवे सुन कर बचन करन आगाने पूरा गुर अखियो जाका मंत्र गुण बेअंत कीमत नहीं पाए जिहबा एक औसत अनेक काहू बोल न पहुँचत प्राणी निराहार निर्वैर सुखदाई अनक भगत बंधन नित कर सद बलिहारी सतगुर अपने एहो हर रस पावे जन कोए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगट।

0: संत जना मिल करो विचार
1: एक सिमर नाम रे वार
0: और अपाप समेत विसार हो
1: चरण कमल रज में उतार
0: अन्न कारण सो प्रभु समरथ
1: कर रहो नाम हर वक्त
0: यह स्थान सांचो हो वह भगवंत
1: संत जना का निर्मल मंद
0: एक आस रखो मन माहे
1: सर्व रोग नानक मिट जाए
0: स्थान को चार कूठ उठतावे
1: सो तन हर सेवा के पावे
0: सुख को नित बाश

0: कमल रखो मन माहे,
1: जन्म जन्म के कर बिख जाए।
0: आप जपहो अवरा नाम च पावहो,
1: समत तैत रहत गत पावो।
0: सार पूत सत हर को नाम,
1: सहस वाहे नाने गुण गाओ।
0: गुण गावत तेरी उत्तर समैन,
1: बिनस जाए हो मैं गत पैलो।
0: अचिंत बसे सुख नाल,
1: सास ग्रास यार नाम संभाल।
0: जाड़ स्यान पसगली मना,
1: साल संग पारे सच तना।
0: हर पूंजी सच करो संच करो हो बिहार,
1: ईरा सुंदर रह जय कार।
0: सर्व निरंतर एको देखो
1: नानक जा।

0: कह हर अगम अपार
1: सब
0: निर्गुण प्रभु सहज सुभाए
1: सब
0: आप है आप अपनी ज्योत तर अपने चले ते आप करने हार अविनाशी सुख अपने आसन
1: है
0: पूर्ण करता प्रभु सोय जब व्यक्त गोचर
1: प्रवेका
0: नाथ निरंजन गोचर गादे अपने आप अपी चार
1: जा
0: निर्मल पुरख पुरख पत होता
1: है
0: निरंजन निरंकार निर्वाण स्वरूप केवल जगदीश
1: है
0: ज्योत स्वरूपी।

0: सुख नाम जप धन मोह सुख
1: चिंता जाय मिटे अहंकार
0: जन को कोई न पहुंचन हार
1: पर ठाडा गुर सूरा
0: नानक ताके कार्य पूरा
1: हाथ पूरी अमृत जाकी दृष्ट
0: दर्शन भेद उदर श्रेष्ठ
1: कर्ण कमल जाके अनूप
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
1: धन सेवा सेवक।

0: सास सास सिमरह गोविंद
1: मन अंतर की
0: सास नित्य त्याग हो तरंग
1: संत जना की
0: आप छोड़ बेनती करहो
1: हर
0: धन के भर लेहो भंडार
1: प्रेम
0: कुशल सहज आनंद
1: नरक
0: निवार उधारो जियो चित चित बहो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग
0: गोपाल दामोदर दीन दयाल
1: पंजन पूरन के पाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: एक लारे
0: सुनत कमावत होत उदार
1: आप
0: सफल जीवन

0: जे किसे कर न्याणा होवे कदी किसे कहा भी बधाई होवे तुहाडे कर कल भाणा वापर गया तुहाडे कर न्याणा होया भाणा वापर गया क्योंकि हुक्म ते भाणा लफ्ज असी दुखांत नूं जोड़िया है गुरु ने पहलियां पौड़ियां च कहा नहीं हो सिखा हुक्म शब्द बड़ा वड्डा है ए सुख भी है ते इहदे विच दुख भी फिर बेनती हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी खोवन आकार हुक्म न कहा जाई करे सो चंगा मन में बेनती करे हुक्मी खोवन आकार हुक्म न कहा जाई हुक्मी खोवन जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईए एक ना हुक्मी बख्शी से हुक्मी सदा पवाईए मेरी बेनती तो सारे पौड़ी नाल पढ़ी पर ध्यान दे आज अर्थां वाल हुक्म विच ही वडियाई है हुक्म विच ही अपमान है हुक्म विच ही मौत है हुक्म विच ही जन्म है हुक्म विच ही सुख है हुक्म विच ही दुख है पर इस हुक्म दी समझ तां पैंदी जद दिन बंदे दी ईगो मरेगी तां क्योंकि ईगो नहीं समझ देंदी ईगो कहिंदी मैं करन वाला फिर पौड़ी पढ़ लिये हुक्मी खोवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी खोवन जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईए एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाईए हुक्म अंदर सब को बार हुक्म ना कोए नानक हुक्म जे बुझे ता हौमे कहे ना कोए ओ हौमे च नहीं कहिंदा मैं फिर बेनती करांगा जी इस गल नूं मैं ज्यादा जोर सिर्फ इसी ते देना है के करे चो सो चंगा मान दुई गणत लाखे जो कर रहा बस ऊ स्वीकार कर ले अक्सर असी जदो ए मैं हुण भाणा शब्द वरते है ते ए आनंद साहिब च रोज पढ़ने हैं जी जां तिस भाणा ता जम्मिया भाणा वापरिया ते बंदे दा जन्म होया परिवार भला पाया एक असी घटना अक्सर सुनाने हैं भाई भिखारी जी दी मैं साखी नहीं सिर मैं तीन गल्लां उच्चो कर रही ने के तस्लीम कर लेना भी जो हो रहा मेनू मनागा अगे असि बाणी चो देखा गे क्योंकि जो गुरु जी दी तां बाणी दे प्रमाण लई दे ने मता कोई सोचे शायद अपने कोलो हुण असि जदों महाराज जी दे सिख बारे पढ़ने भाई भिखारी बारे ते जेड़ा सिख इनू मिलन गया ओदा नाम दरअसल सी भाई गुरमुख बच्चे दा विआह सी आप सब नू पता है भी जवान पुत्र दा विआह कर इना खुशियां खेड़े पर भाई भिखारी जी जेड़े ने ओ तप्पड़ सींदे पए सन ते जदों दूजे दिन व्यांदड़ मुंडा ही जिहदी बरात गई ओही मर गया ते वापस आए ते भाई भिखारी जी अज कल जिस बच्चे दे व्याह विच इन्ने साजो समान घर इकट्ठा करी बैठे सन ते अज तप्पड़ विछा के उस बच्चे दी मंजी दे कोल बैठ के बंदगी कर लग पए उत्थे उन्हां नूं पुछया गया भी जे तुहानूं पता सी संस्कार तो बाद ते तुसी ए गल कल क्यों ना कीती तुसी भेद क्यों ना खोलिया वह कहन लगे सिक्खी विच जिस बंदे ने मुक्त होना तीन गल्लां चेते रखे ये तीन लफज उत्थे भी ने ताते पो गुरमुख सुन लीजै ए भाई गुरमुख मेरी गल सुन भाणा मानन मन थिर कीजै भाणा मनन वास्ते मन नूं अडोल बना किवें जिवें उस्ताद अपने विद्यार्थी नूं साल दो साल पांच साल दस साल वी साल पढ़ांदा है ते वी पच्ची साल बाद फिर वो परचा
1: गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच आई भट्टां दी ए महान रचना जिस विच उन्होंने कुंडलनी दा जिक्र कीता है गुरमत अनुसार कुंडलनी की है और इस दा जागना की है ए विस्तार साहिबां दी बाणी द्वारा प्रस्तुत है। कुंडलनी एक ऐसी शक्ति परम शक्ति जिनू जीवन शक्ति कहंदन चेतन शक्ति कहंदन देव शक्ति कहंदन ए नाभि तो थल्ले कुंडल मार के बैठी है जिस करके इस शक्ति दा नाम कुंडलनी पै गया। इस तरह सुती हुई है जिस तरह कोई सपनी कुंडल मार के सुती हुई होवे। इस सुती हुई सपनी नूं जगाण लई अक्सर सपेरे बीन बजांदे ने और बीन दी धुन ते मस्त होके सुती हुई सपनी जागदी है उठदी है अपना सिर उपर नू लै जांदी है। जीवन शक्ति दा मूंह भी थल्ले है, सपनी दी तरह कुंडल मार के सुती हुई है। और ये शक्ति नाभी तो थल्ले जप तप कीर्तन साधना द्वारा जद ये कुंडलनी जागदी है तां अगे छे चक्रां दी एक रोक है जिन्हां नूं विन के ये शक्ति पहुंचदी है आग्या चक्र तक, परमानंद तक, परम रस तक, परम निधान तक। ये शक्ति उपर उठे बनदी है राम रस नाम रस, और ये शक्ति थल्ले जाए इसे नूं कहिंदे ने एक काम रस है। जीवन दा प्रवाह थल्ले दा वेग काम रस है, जीवन दे प्रवाह दा उपर दा वेग नाम रस है, राम रस है। शक्ति ये जागे किवें? वाहिगुरु वाहिगुरु दा चिंतन, गुरमंत्र दा जाप, मूल मंत्र दा जाप, गुरबाणी दा पाठ, इहदे नाल इह सुत्ती हुई शक्ति जागदी है। सब तो प्रथम नाभी तो उपर जिहड़ा चक्र है वह है मूल आधार। इहदे उपर एक होर चक्र है जिहनूं कहिंदे ने स्वदिष्टान। इहदे उपर फिर एक होर चक्र है जिसनूं कहिंदे ने मणिपुर, और इस तो अगे एक होर दुनिया है जिसका नाम है आहत अनाहत चक्र। और जद ये शक्ति कंठ तक पहुंचती है और इत्थे पै चक्र नूं विन के अगे लंघदी है, उस चक्र का नाम है विशुद्ध। सब तो अखीरला चक्र है आग्या चक्र। इंज कह लो अध्यात्मक मंडल दे ये पड़ाव ने जिथों लंघ के जीवन शक्ति नूं उपर जाना पैंदा है, परम धाम तक पहुंचना पैंदा है, परम आनंद तक पहुंचना पैंदा है। मनुख एक शक्ति है, जीवन एक शक्ति है, और शक्ति रस दी प्राप्ति कर सके इस तरह दी उसके अंदर तीबर इच्छा है। रस थल्ले भी है, रस उपर भी है, रस लोक दा भी है, रस परलोक दा भी है, रस शरीर दा भी है, रस आत्मा दा भी है, रस संसार दा भी है, रस निरंकार दा भी है, रस थल्ले दा भी है, रस उपर दा भी है। पानी दा वेग थल्ले अपने आप जांदा है, जीवन शक्ति भी थल्ले अपने आप जांदी है। किसी प्रेरणा दी लोड़ नहीं, मनुख नूं कोई प्रेरणा देण दी लोड़ नहीं भी तू क्रोधी बन जा, लोभी बन जा, कामी बन जा, बेईमान बन जा, झूठा बन जा, ये अपने आप बन जांदा है। सतवादी बनना है, संतोखी बनना है, दयालु बनना है, खिमावान बनना है, शीलवान बनना है, तो फिर उद्दम उपराले ते वसीलियां दी लोड़ है। जिवें पानी उपर उठे तो बिना प्रेशर दे उपर नहीं जा सकदा, हू बहु जीवन शक्ति नूं भी कोई दबाव चाहीदा पिछे जिस दे आसरे ते ए उपर उठ सके। ओ दबाव ओ प्रेशर है केवल जप। जप करदिआं ए शक्ति उठदी है। जबान तो जप दी धुनी कन्ना दे राही जद अंदर प्रवेश करदी है तां फिर सुत्ती हुई जीवन शक्ति जागदी है। इसनू सतगुरु इंज कहिंदे ने सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सोया मन जागाई। अनंत काल तो अनंत जन्मा दे सड़ी जीवन शक्ति सुत्ती ही रही है। और जीवन अक्सर मनुख सौ के ही बतीत कर देंदा है, जागत सोया जन्म गवाया। ये शक्ति जागे उपराले ने सतसंग ते जप, और जैसे शक्ति उपर उठदी है मूलाधार चक्र नूं विन के उपर उठदी है तो मनुख दी काम वासना समाप्त हो जांदी है। मनुख दे काम रस विच कोई रुचि नहीं रहिंदी क्योंकि काम दा थल मूलाधार तो थल्ले है ते शक्ति मूलाधार तो उपर उठी। और उपर उठदे हां ए वासना खत्म हुई, प्रार्थना दा जगत शुरू होया, वासना दा जगत खत्म होया। लेकिन सिर्फ वासना ही मिटी है, सिर्फ काम रस्ते च ही रुचियां घटियां ने, अजे परम निधान परम आनंद दी प्राप्ति नहीं हुई। जिन्हां दी जीवन शक्ति मूला आधार तो भी उपर नहीं उठती, देखण दे चाया भावे उन्हां दी उम्र 80-90 साल दी ही क्यों ना हो जाए, काम वासना उन्हां दी समाप्त नहीं हुंदी। ए वासना उन्हां दे अंदर बनी रहिंदी है। पुंडर केस कुसम ते धौले, सपल पताल की बाणी, लोचन सर में बुद्ध बल नाठी, ता काम पावस माधानी। भगत लोचन जी महाराज दा कथन, केस चिट्टे हो गए, चेहरे ते झुरियां पै गई, बचन शुद्ध नहीं निकले दे, और अखां विच दीद नहीं रही, कमजोरी ने चारों पासे शरीर नूं निढाल कीता है, लेकिन काम वासना दी मधानी इस टुटी हुई मटकी देच भी चल रही है। पावे मधानी देच कुछ नहीं रही, चाटी नहीं रही, दही नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर इस टुटी हुई खुश्क मटकी दे अंदर भी काम दी मधानी बकायदा चल रही है। ता काम पावस माधानी। जैसे जैसे मनुख जप करता है ये शक्ति उपर उठती है और मूलाधार नो विन के उपर उठती है, काम वासना समाप्त। इको एक तरीका है इस वासना तो बचण दा, इस वासना तो उपर उठण दा, वो है जप। ये शक्ति थल्ले जावे तो संसार दा जन्म होंदा है, ये शक्ति उपर उठे तो निरंकार दी दुनिया दे जन्म होंदा है, ये शक्ति थल्ले जाए किसी शरीर नू जन्म देंदी है, ये शक्ति उपर जाए परमात्मा नू जन्म देंदी है, ये शक्ति थल्ले जाए रेत दे च रेत दी ढेरी हो जांदी है, ये शक्ति उपर उठे हीरा हो जांदी है, मोती हो जांदी है, रतन लाल जवाहर बन जांदी है। तो ये पहचान है कि साधना करन वाले दी ये जड़ी शक्ति है ये मूलाधार नू विन के उपर उठ गई है, उदी काम वासना समाप्त हो गई, उदे च रूप दी खिच नहीं रही, रूपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंड, हुण रूप नू वेख के ओ अरूप दे दर्शन करेगा। सतगुरु कहिंदे ने रूपवंत होए नाही मोहे, प्रभ की जोत सगल घट सोए। हुण जगत दी तमाम सुंदरता परमात्मा दी सुंदरता दा बोध करा रही है, हुण परम रूप दे च परम अरूप दे दर्शन हो रहे ने, हुण आकार दे च निराकार दी झलक मिल रही है। इस वास्ते वासना समाप्त, वासना दा जगत खत्म, प्रार्थना दा जगत शुरू होया। प्रार्थना शुरू ही उदों आउंदी है जद शक्ति मूलाधार नूं विन के उपर उठदी है। इस तों पहले ते वासना दा जगत है। अगर बंदा जप भी कर रहा है, तप भी कर रहा है, धार्मिक मंदिरां विच बैठ के साधना भी कर रहा है, जेकर उसकी शक्ति मूलाधार तों उपर नहीं उठी तां उसका यह भजन उसका यह धर्म वह भी वासना है, प्रार्थना नहीं है, सब कुछ वासना है। इस वास्ते अक्सर देखण नूं मिलदा है कि धर्म मंदरां विच बैठे साधक संसार दी ही मनोकामना कर रहे ने, ते कामना विच जीण वाला मनुख ते ही कामी है। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। भगत रविदास ने गल बिल्कुल स्पष्ट कर दिती है कि मौजूदा दौर विच मनुख दियां कामनावां बहुत वधियां, बहुत वधियां, और मनुख अति कामी हो गया, अति कामी हो गया। कामना संसार दी हुंदी है, वासना संसार दी आउंदी है, प्रार्थना करतार दी आउंदी है। प्रार्थना दे नाल संसार नहीं मिलदा, वासना दे नाल निरंकार नहीं मिलदा। वासना संसार नाल जोड़दी है, प्रार्थना करतार नाल जोड़दी है। तो जैसे जप करदिआं शक्ति मूलाधार नूं विन के उपर उठी, प्रार्थना दा जगत शुरू होया, वासना दा जगत समाप्त होया। लेकिन अजे परम निधि परम खजाना परम आनंद दे द्वार नहीं खुले। जप जा रही है, तप जा रही है, साधना जा रही है, शक्ति सहजे सहजे ऊपर उठ रही है। दूसरा चक्र है स्वदिष्टान, जो मूलाधार तो ऊपर है। साधना करदे करदे, जप करदे करदे, अभ्यासी दी सुरत जीवन शक्ति ध्यान दे आसरे ते जैसे ऊपर उठती है, ओ फिर स्वदिष्टान चक्र नु विन के ऊपर उठती है। स्वदिष्टान चक्र विनया गया है, पहचान की होवेगी। इस मनुख दे अंदर मौत दा भय नहीं होवेगा, ये मरण दे भय तो उच्चा उठ गया। मौत दा भय सामने रख के इस तरह दे पुरुष नु डराया नहीं जा सकता, जिसकी शक्ति स्वदिष्टान तो उपर उठ गई है। दरअसल डर विच जीण वाला मनुख इस गल दा सबूत मुहैया कर रहा है कि स्वदिष्टान तो थले जी रहा है। भगत कबीर कहंदे ने, कहत कबीर राम गुण गाओ, आप न डरो ना अवर डरा। मैं उस दुनिया विच पहुंच गया जिथे ना मैं किसी तो डरदा ना ही किसे नु डरांदा। अक्सर ओही मनुख दूजियां नु डरांदा है जिहड़ा किसे तो डरदा है, क्योंकि भयभीत होया मनुख ही अगले नु भयभीत करदा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज भी परम ज्ञानी दे लक्षण यही दसदे ने, भय काहू को देत ने नै भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। वास्तविक परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी ओही है जो भय दी दुनिया तो उच्चा उठ गया है, ना डरांदा है ना डरदा है। स्वदिष्टान चक्र नु विन के जैसे शक्ति ऊपर उठती है, भय दी दुनिया खत्म, निर्भय दी दुनिया शुरू हुई। निर्भय केवल परिपूर्ण परमात्मा है। साहिबां दी बाणी दा फरमान, डर पे धरत आकाश निखतरा, सिर ऊपर गगन करार। पौन पानी बैसंतर डर पे इंद्र विचारा। एका निर्भव बात सुनी, सो सुखिया सो सदा सुहेला, जो गुरमुल गाए गुनी। सतगुरु दा ते इत्थे तक फरमान है कि सूक्ष्म रूप देच ग्रह निछत्र सूरज चंद तारे सब डरे हुए ने, पै देच ने डर दे चने, मर्यादा दे चने। तमाम जीव पशु पंखी मनुख डर दे चने। ये ठीक है कि डर मर्यादा दे च रखन वास्ते चाहिदा है, लेकिन हर वक्त मनुख डरिया होया अपना मानसिक संतुलन गवा बैठता है। किधरे मैं बीमार ना हो जावां, किधरे मैं मर ना जावा, किधरे मेरा कमाया हुआ धन नाश ना हो जाए, बनी बनाई प्रतिष्ठा मेरी खत्म ना हो जाए, किधरे मेरा रुतबा कोई खो ना लवे, किधरे जंग देच या मुकदमे देच मैं हार ना जावा। ये भय मनुख नु बने आ रहा है। स्वदिष्टान चक्र नु विन के जैसे जीवन चेतना जीवन शक्ति ऊपर उठती है, ये भय दी दुनिया खत्म हो गई, निर्भय दी दुनिया आरंभ होई। और परिपूर्ण परमात्मा चूंकि निर्मल है, हुण उसदा ही भय शुरू होया, भाव उदी गल मनन दा अंदर चाव पैदा होया। इसे नू सतगुरु कहिंदे निर्मल भाव पाया, हर गुण गाया, हर वेखे राम हदूरे। परमात्मा आप निर्मल है, उदा भय भी निर्मल है। जगत मैला है, जगत दा भय भी मैला है। जगत दा भय जिस दे अंदर है वो निर्मल नहीं हो सकेगा, ते परमात्मा दा भय जिस दे अंदर है वो मैला कदी नहीं हो सकेगा, सदीव निर्मल होवेगा। बाबे फरीद दे श्लोकां दे साहिब गुरु अमरदास जी महाराज दा एक परम पावन श्लोक है, भय पईए तन खीण होए, लोभ रत विच्चों जाए, ज्यों बैसंतर धात सुध होए, त्यों हर का भव दुरमत मैल गवाए। जिस तरह अगन सोने दी तमाम खोट नू कढ देंदी है, रब्बी निर्मल भय मनुख दे तमाम विकारां नू शांत कर देंदा है, मनुख दे तमाम पतत संस्कारां नू खत्म कर देंदा है। तो स्वदिष्टान चक्र नू विन के जैसे जीवन चेतना उपर उठी, मौत दा भय खत्म हो गया। किसे प्रकार दे भय दा जड़ा बोझ सी ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਿਰਭੈ ਦੁਨੀਆ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਉਤਰ ਗਏ। ਜਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਧ

इतनी गलती स्पष्ट हो गई कि सुरत उच्ची करनी पेगी। ध्यान दे आसरे ते शक्ति नूं उपर लै जाना होवेगा। अक्सर देखण दे चाया है कि प्रेशर दा मारिया होया फुहारे दा पानी उपर ते उठदा है, पर धरती दी खिच दा मारिया होया फिर थले फिर थले फिर थले। चंगी संगत धर्म ग्रंथां दे पाठ पठन दे नाल जीवन शक्ति उपर ते उठदी है, पर फिर संसार दे खिच दी मारी हुई थले थले थले। किधरे धन खिच लैंदा है, किधरे रूप खिच लैंदा है, किधरे प्रभुता खिच लैंदी है, किधरे संसार दा कोई होर साजो समान खिच लैंदा है। इस तरीके दे नाल इह दो पासे दी कशिश है, परमात्मा दी अपनी खिच संसार दी अपनी खिच। किधरे बगौर मुताला करके तमाम ब्रह्मंड दे उत्ते निगाह मारीए तां सब कुछ एक दूजे दी कशिश ते खड़ा है। सूरज चंद तारे ग्रह नक्षत्र सब एक दूजे दी कशिश ते खड़े ने। ना थल्ले कोई थंबी है, ना उपर किसे रस्सियां दे नाल लटके हुए ने, सब एक दूजे दी कशिश ते खड़े ने। कदी परिवार दा इकट्ठ देखिए तां इह वी एक दूजे दी कशिश ते खड़े ने। पति दे अंदर पत्नी दी कशिश, पत्नी दे अंदर पति दी खिच, पुत्रां दे अंदर मां बाप दी खिच, मां बाप दे अंदर पुत्रां दी ममता। भैण भरा आपसी ममता करके जुड़े रहिंदे ने, कशिश करके इह संबंध जुड़िया रहिंदा है। देखण दे चाया कोई ग्रह नक्षत्र स्यारा सितारा जद कशिश दे दायरे तों बाहर निकलदा है टुट जांदा है, खत्म हो जांदा है, उहदी होंद ही मिट जांदी है। जद भी किसी मनुख दे अंदर कशिश नहीं रहिंदी, परिवार दी खिच नहीं रहिंदी, टुट जांदा है पत्नी तों, टुट जांदे ने इस्त्रियां अक्सर पति तों, टुट जांदे ने बच्चे मां बाप तों, और अलग हो जांदे ने मां बाप बच्चियां तों। टुट जांदे ने रिश्ते भैण भरावां दे, भरा भरावां दे और मित्रां दे। इह सारा संसार एक दूजे की कशिश ते खड़ा है, यह सारा जगत एक दूजे की खिच ते खड़ा है। तो एक खिच संसार दी है, एक खिच करतार दी है। जिस दिन बंदे की जीवन शक्ति, जिस दिन बंदे की सुरत, जिस दिन बंदे का ध्यान परमात्मा की कशिश के दायरे विच आउंदा है, फिर थले आवना बहुत औखा है। उसे नूं कहिंदे दी सुरत इतनी उपर चढ़ गई है, यह थले नहीं आऊंगा, ये थले नहीं आ सकेगा। जैसे कहिंदे ने कि गालबन जमीन दी कशिश दा दायरा कोई 400 मील तक है, इस तों उपर जिहड़ी वस्तु चली गई उहनू जमीन नहीं खिंच सकेगी, क्योंकि जमीन दी कशिश दे दायरे तों ही ये वस्तु अगे चली गई। हू बहु संसार दी कशिश एक सीमा तक है, धन दी कशिश एक सीमा तक है, रूप रंग ते पदार्थां दी कशिश एक सीमा तक है। जद कदी कोई मनुख साधना करके जप तप करके इस सीमा तो अगे लंघ जांदा है, फिर पदार्थ दी धन दी रूप दी कोई अहमियत ही नहीं रहिंदी कि इस मनुख नूं खिच के थले गिरा सके। सुरत उपर उठ गई, शक्ति उपर चली गई। तो जप करके तप करके जिस दिन जीवन शक्ति सब अधिष्ठान चक्र नूं विन के उपर उठती है, मौत दा भय खत्म। मौत दा डर दे के इस तरह दे बंदे नूं गिराया नहीं जा सकता, भ्रष्ट नहीं कीता जा सकता, गिराया नहीं जा सकता। जप जारी है, तप जारी है, सहजे सहजे साधक दी सुरत ध्यान दे आसरे ते जीवन शक्ति उपर उठती है। तां फिर तीसरा चक्र है मणि पुरुष, विचारां दी दुनिया, फुरनियां दी दुनिया, सोच दी दुनिया। इत्थे तक जैसे शक्ति पहुंचती है और इस चक्कर नूं विन लिए, फुरने मिट गए, विचार शांत हो गए, भटकना मिट गई, टिकाओ नसीब हो गया, एकाग्रता नसीब हो गई। अगे दी दुनिया जज्बियां दी दुनिया, वलवले दी दुनिया, भावना दी दुनिया। इसे नूं अक्सर धार्मिक विचारक ऐसा कहिंदे ने
ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ

0: दीन रखक संकट हारन। कुछ विद्वान कहने दीन बंधु, इहदा मतलब गरीबां दा रखवाला है। ते जितनी मर्जी वड्डी तो वड्डी मुसीबत आ जाए, सच ए वे मेरा पुत्तर वड्डे तो वड्डे संकट नूं विकार कर देवेगा। ते साडे मैं थोड़ी जी बेनती आप नूं करनी, खास करके सरदार कपूर सिंगोणा ने एक वारी जलंधर रेडियो ते एक लैक्चर दिता सी, है तां थोड़े दे मिंटां दा सी, ते मैं उहनूं तां आधार बना रहा क्योंकि जिस विद्वान की खोज होवे भावे वह दुनिया तो चला भी जाए ओदा जिक्र जरूर करना चाहिदा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी बारे शब्द कहे सन, ए संकट हरन दीन रखक। चलो ए शब्द तां ने साडे कोल हिस्ट्री दे, ते इस विच आ भी कह सकने हां भी कवि ने भावना नाल लिखिया होवे, पर जेडे बचन आप जी रोज सवेरे शाम दुनिया भर विच जिथे भी सिख ने, गुरुद्वारियां विच घरां विच जिथे नेमी प्रेमी रोज अरदास करदे हां, गुरमुखो करोड़ां सरदालू रोजाना गुरु तेग बहादुर साहिब नूं याद करदे आ। ते गुरु गोबिंद सिंह दो बचन कहिंदे आ कि एक मेरे पिता जी नूं, चलो ते शब्द उहनां तेग बहादुर वरत्या कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी नूं कोई भी याद करेगा सब तो पहला उहनां दी याद विच घर विच किसी चीज की कमी नहीं, नौ निधा ने। दूसरी गल कि जिथे पिता जी नूं कोई याद करेगा पिता गुरदेव ओदी सहायता वास्ते जरूर पहुंचणगे। असीं रोज पाठ करने आ तेग बहादुर सिमरे, इहदा मतलब गुरु तेग बहादुर साहिब नूं चेते कीते आ। उंज मैनूं पता है नौनिध दे अर्थ गुरबाणी विच बड़े होर भी डूंघे, नौनिध अमृत प्रभ का नाम, प्रभ का नाम शब्द वरत्या। हजूर सच्चे पातशाह जी ने इत्थे बचन कीता, कहन लगे ते थोड़ी आवाज घट कर, तेग बहादुर सिमरे घर नौनिध आवे ताए, ताए दर था पा समझने दौड़ के। पिता गुरु तेग बहादुर साहिब जी नूं याद कोई करे घर नौ निधियां ता के आउंदियां ने। ते अगला बचन कीता सब थाई होए सहाय, जिथे भी कोई याद करदा गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह हर थां ते सहायता करन वास्ते पहुंचदे। दास एक होर बेनती करे कि गुरु नानक साहिब जी तो बाद जे दूर थोड़ा जा होर गया ते गुरु हरगोबिंद साहिब, पर गुरु नानक साहिब जिन्ना नहीं सफर, गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज इन्हां दा पूर्व रटन के जिन्हों आपां पटना साहिब ढाका असाम दा जिक्र करने। गुरु तेग बहादुर साहिब दी परवरिश अमृतसर दी धरती ते शुरू हुई। उस दिन मैं एक बेनती कीती सी कि महाराज नूं सुते सिद्ध बचपन तो ही बैराग सी बिरह सी, पर एक घटना ने उन्हां दी जिंदगी ते बहुत गहरा असर कीता। वह घटना सी अपने वड्डे वीर बाबा अटल राय जी दा चलाना, क्योंकि उन्हां दा चलाना श्री अमृतसर साहिब दी धरती ते होया। गुरु तेग बहादुर साहिब उन्हां ने कदी भी गुरु हर राय साहिब, गुरु हर कृष्ण साहिब, गुरु हरगोबिंद साहिब उन्हां ने कदी भी तीन पातशाहां कोल यह जताया ही नहीं कि मैं वड्डा हां ते गद्दी दा वारस मैं हां। गुरु हरगोबिंद साहिब दे बेटे ने, पर उन्हां ने नहीं जताया कि मैं हर राय जी तो वड्डा हां। ने जो पिता गुरुदेव ने कह दिता कीरतपुर साहिब रहा। ते इत्थे एक वार अर्ज कीती सी महाराज जी जदों भी संगत विच आउंदे सन एक तां नेत्र नीवे करके, क्योंकि साडे कोल इतिहास दीआं घटनावां ज्यादा उच्चा नहीं संबोल दे, चंचल ताई कदे नहीं सी उहनां दे नेड़े आई।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3: ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੀਅਲਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਹਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ, ਜੋ ਆਪਣੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਟਾਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਰੀਅਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
2: ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।
3: ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਨੂੰ
2: 604-351-5111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 604-351-5111 ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।